हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम से नए जुड़ रहे हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है। मैं बढ़ना चाहूँगी पहली फरमाइश की गीत की ओर। पहली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में चनूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच हमारे और भी अनुरोधकर्ता इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं अमरावती से राहुल नगर से सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणा ने जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, तुलसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, वसंत लाल, हीरा मोती, पन्ना लाल जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, श्रीरामपुर से हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, पुनावले से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छनुला श्रीवास, रंजन साहू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश के गीत हमारे भी चाहिए रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है सैयारा, गीत के बोल भी यही है श्रोता साथियों, क्योंकि एक शीर्षक गीत है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, शिशिंदे, कृष्णा गोड़के जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ना चाह रहे हैं बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिका अली खान। पुसद महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं राहड़ी मानकर, राम मानकर, सबुरी मानकर, केदार मानकर जी और भी हमारे श्रोता साथी है जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन जी, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामनाथ कश्यप। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। पचमा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुंसारी, कलीमंसारी जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक जी और माही मलिक जी। कश्मीर से है फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सैयारा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था सैयारा फिल्म का कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है बोरखेड़ा पित्रामल से। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, गीत के बोल है मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में विनोद मोड़न, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मोड़त जी। इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी कुछ श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र मनहरण वर्मा जी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंज डुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान अंसारी, उस्मान अंसारी जी और कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, एंजल भाटिया जी। जुड़ना चाह रहे हैं बीरशहर महाराष्ट्र से नंद किशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री मैतरे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डहुल, बीपी कुलथे जी। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और हिमाक्ष जी। चोकलटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्ध अब्बासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरवराज फरदीन, सुहान अरजान अपान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। साथ ही उसी बीच बाटापारा छत्तीसगढ़ से भी जुड़ रहे हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है परदेस। गीत के बोल है मेरी महबूबा। इस गीत को आवाज़ दिए कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी और मिश्रता साथी हैं जो इसी के साथ जुड़ रहे हैं। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनमदीपा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से जुड़ रहे श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, इसी बीच शरीमपुर से हैं राज एस डी अंसारी, खासमा आसमा खातून अंसारी, इकबाल मस्तान जी। मारवाड़ बिलड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मुद अंसारी, गुलाम शाबी राही, मेराज जहां। जुड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से जाखोद से शंभु दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। डुमराव पुराना तालाब से हैं वलीउल्लाह अंसारी, अजमानाज अंसारी, शबनम बानो। बक्सर से एजिराज, फातिमा खातून अंसारी। दिल्ली से डॉक्टर अनीमा और सोनम अंसारी जी। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाकर। महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताडे, आशीष मुहेरकर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे पीछे आया है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बजरंगी भाईजान। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी। फरमाइश करता जुड़ना चाहने इस गीत के साथ में धनोरी तेलीवाला से निशा सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल, कुणाल मेहरा। कोलगांव से जुड़ना चाह रहे पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक और सार्थक प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं महेंद्र प्रताप, मरकाम जया, मरकाम जोगेंद्र, गजेंद्र, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मरकाम मोहन सिंह, सहोदरी भाई, मरकाम। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पराग टेलर जी। बुलढाणा इस्लामपुरा महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। इस्लामपुरा महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमित कुमार दामोदर, पवन जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी मोहम्मद। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की। और अगले फरमाइश के गीत हमारे भी चाहिए नवाहशर पंजाब से। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, गीत के बोल हैं जीना यहाँ मरना यहाँ। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं गंगनदीप थार्टी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम थांडी का, वानविका जी और वाणी थांडी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं कुमारहड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सर, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, जोगेशपुरी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रुजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबे राव जी। इंदौर से जुड़ना चाह रहे मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वादी प्रयागराज चौधरी, लड्डू देवी का चौधरी जी। अनारकली बाजार जगराव से है जुड़ रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचार सिंह पाठक जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। जुड़ रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रंजन रज्जक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश और सौम्या जी। महाराष्ट्र से रुपेश सिंह, मैस प्रगेश, प्रीतेश संघे, पूरा संघे परिवार। पटियाला से जुड़ रहे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमू, मानस राज। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। फजिलका पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा जी। उत्तर प्रदेश से रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, पदना बदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को, गीत के बोल हैं जीना यहाँ मरना यहाँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।
3: जी

0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये
1: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कलंक। गीत के बोल है कलंक नहीं इश्क है पिया। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। जुड़ना चाह रहे पत्रोड़ से विजय अंबाड़कर, सुनीता अक्षर, ऋषिकेश अंबाड़कर और भी हमारे दोस्त जो हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, वसीम महाराष्ट्र से हैं, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरदे, पदेश रोसे, मायरा सुरोसे जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। महाराष्ट्र से है श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भविका कीटे, समस्त कीटे परिवार। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, सेलू से चंद्र कुलकर्णी, हेमंत और सी आर कुलकर्णी जी, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नाजी शेख, दानी शेख, अमन राफरीदी, राधा नामदेव जी, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। अकोला से शिशिला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, अर्पिता जी। उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, चितल कश्यप, सोनुश्री, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहिनी, बलवीर सिंह जी। और भी हमारे श्रोता साथी भाटापारा से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी, हंसिका जोशी जगदलपुर बस्तर से हैं, पूनम नायडू जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी दोस्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश करनेजा, पूनम नदेजा, विशाल निमित आहूजा जी, दिशानी जी, जलाना शहर से सोमनाथ यादव, नेहरू चौक पैटर्न, सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, सिया यादव, गीता चंदन, एकनाथ, संगीता यादव। इसी बीच जुड़ रहे हैं डोडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन।

देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नाशिर शेख, नाजर नाशिर, शाजिद शाहिद, गोविंद पर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी, कोलकाता से हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता। झुमरी तलैया से जुड़ रहे हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, तुष्टी आयुषी, निरुद्ध बाबू, मुनि देवी जी, जयप्रकाश साहु, वसंत लाल जी। यूपी से हैं सूरज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी सरोज चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी चौरसिया, शिवा शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ जी। खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियालुक, अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, हमजा डावर, उमर डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कलंक नहीं इश्क है पिया। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम और हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ श्रोता साथियों कि आज के सभा में होने वाले गीत संगीत और कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में राय सुझाव आप हमें पहुँचा सकते हैं हमारे पत्रों द्वारा, हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम, अगली सभा में कुछ नई बातों के साथ में, नई फरमाइशों के साथ में, नए कार्यक्रमों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ साथियों, नमस्कार।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का धंधो बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा

0: સ્વાગત કરો હું અમારી આજની હાસ્યની સભામાં. આપ સાંભળી રહ્યા છો આપણો સમુદાય રેડિયો વગર રેડિયો 98.8 FM માટે. નવો આપણે હાથે આપની બોલંજલી પારેશ્વરની આજે વાર સોમવારની તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2026 નો દાડો હે.
1: आज तो ना तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
2: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
1: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
2: अरे दीदी आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
1: सुषमा हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
3: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना ही सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
4: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
5: शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
4: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
7: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
6: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
7: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
6: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
7: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
6: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवा साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सपने की जो लगभग हर युवाओं की आंखों में कहीं न कहीं जरूर होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा घर जहाँ लौट कर आने पर सुकून मिले, जहाँ परिवार सुरक्षित महसूस करे, जहाँ डर नहीं भरोसा हो, और एक ऐसा भविष्य जिसमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर हो।
0: जी हाँ,
1: इसी सोच के साथ आज का हमारा विषय है हर युवा का सपना, सुरक्षित घर और बेहतर भविष्य। सवाल सिर्फ इतना नहीं है श्रोता साथियों कि युवा का अपना घर कब होगा, सवाल ये भी है कि वो घर कैसा होगा, उसमें सुरक्षा कितनी होगी, परिवार के लिए सुविधाएं कितनी होगी, और उस घर तक पहुंचने के लिए युवा आज क्या कदम उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को मिलने वाला है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत में एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुन ले पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हर युवा का सपना सुरक्षित घर और बेहतर भविष्य को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी। यही अगर बात करें कि घर सिर्फ चार दीवारों का नहीं होता। दोस्तों, जब भी हम घर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है।
1: जी हाँ,
0: चार दीवारें, छत, दरवाजा, खिड़कियां और परिवार। लेकिन क्या घर सिर्फ इतना ही है? नहीं श्रोता साथियों, घर वह जगह है जहाँ हमें अपनापन मिलता है। घर वह जगह है जहाँ हमारी चिंता करने वाला कोई होता है। घर वह जगह है जहाँ हम अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं और परेशानियों में सहारा पा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, एक युवा के लिए सुरक्षित घर उसके भविष्य की पहली मजबूत नींव हो सकती है। क्योंकि जिस युवा को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता कम होती है, वो अपनी पढ़ाई, रोजगार, कौशल और सपनों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। लेकिन आज के समय में सुरक्षित घर का मतलब केवल मजबूत दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षित घर का मतलब है जहाँ महिलाओं और बच्चों का सम्मान हो।
1: जी हाँ,
0: जहाँ बुजुर्गों की देखभाल हो, परिवार के सदस्यों के बीच संवाद हो, नशे और हिंसा से दूरी हो, साथ ही आर्थिक मामलों में भी समझदारी हो, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार पूरी तरीके से मिले।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मजबूत दीवारों से नहीं, मजबूत रिश्तों से बनता है सुरक्षित घर। श्रोताओ, हर युवा के सपने अलग हो सकते हैं। किसी का सपना होता है कि वो अच्छी नौकरी हासिल करें, किसी का सपना होता है कशिश कि वो अपना व्यवसाय शुरू करें।
0: बिल्कुल,
1: किसी की इच्छा होती है कि वो अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाए, किसी का सपना होता है कि उसके छोटे भाई बहन उससे बेहतर सुविधा के साथ पढ़े।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इन सभी सपनों के पीछे एक भावना अक्सर समान होती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। युवा जब पहली बार कमाना शुरू करते हैं श्रोताओं, तो उसकी पहली कमाई से पैसे नहीं होते, वह उसके आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होती है।
0: जी हाँ,
1: उसे लगता है कशिश कि अब मैं परिवार के काम आ सकता हूँ, और यही भावना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
0: जी जी,
1: लेकिन बेहतर भविष्य केवल अच्छी कमाई से नहीं बनता, इसके लिए जरूरी है सही योजना, सही निर्णय और सही भविष्य के प्रति जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि युवा साथियों अक्सर कहते हैं कि जब नौकरी लग जाएगी तब बचत को शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब ज्यादा कमाई होगी तब भविष्य के बारे में सोचेंगे, और कुछ युवा तो ऐसा सोचते हैं जागृति जी कि अभी उनकी उम्र ही क्या है, बाद में देख लेंगे। लेकिन भविष्य अचानक नहीं बनता, भविष्य आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगर हमारे युवा आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई उपयोगी कौशल सीखते हैं, रोजगार के अवसरों को समझते हैं और पैसे का सही उपयोग करना सीखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो वे अपने भविष्य की नींव आज से ही मजबूत कर सकते हैं। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: कहा भी गया है, बेहतर कल की नींव आज की समझदारी से रखी जा सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि किसी भी युवा के बेहतर भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है शिक्षा। लेकिन आज शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना और परीक्षा पास करना नहीं है।
0: जी हाँ,
1: आज के समय में युवा को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कौशल सीखने की जरूरत है। डिजिटल कौशल, संचार कौशल, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय समझ, समस्या समाधान की क्षमता, नई भाषा सीखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सभी भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। विशेष रूप से कशिश ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वे अपने आसपास के उपलब्ध प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त करें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कई बार अवसर हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका लाभ नहीं उठा पाते।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सीखते रहिए, नई जानकारियां लेते रहिए, अपने कौशल को समय के साथ बदलते रहिए। क्योंकि कहा गया है, डिग्री रास्ता दिखा सकती है लेकिन कौशल मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से

0: बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे युवा साथियों के सपने सुरक्षित घर और अच्छे भविष्य को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी यहाँ पर क्यों ना उन्हें एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में और हमारी बातें चल रही थी हर युवा का सपना सुरक्षित घर और बेहतर भविष्य को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। इसी के साथ हम जानते हैं रोजगार और आत्मनिर्भरता के बारे में।
1: जी हाँ,
0: कशिश, सुरक्षित घर और बेहतर भविष्य की बात रोजगार के बिना अधूरी है। हर युवा चाहता है कि उसके पास सम्मानजनक काम हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
1: जी हाँ,
0: लेकिन रोजगार के लिए वो केवल नौकरी का इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे गाँव और कस्बों में भी बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। किसी युवा के पास खेती का ज्ञान है तो वो कृषि से जुड़े नए तरीकों को सीख सकता है।
1: जी हाँ,
0: किसी को मोबाइल और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है तो वो डिजिटल सेवाओं से जुड़ सकता है। किसी को सिलाई कढ़ाई खाना बनाने या हस्तशिल्प का हुनर है तो वो इसे रोजगार का रूप दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हर हुनर छोटा नहीं होता। सही दिशा और मेहनत के साथ एक छोटा कौशल भी बड़े अवसर में बदल सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही साथ दोस्तों हम कमाई के साथ बचत की आदत को भी विकसित कर सकते हैं। यानी कि सुरक्षित भविष्य की एक महत्वपूर्ण नींव होती है या फिर कहें कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है बचत। पहली कमाई हाथ में आते ही बहुत से युवाओं का मन होता है कि वे अपनी पसंद की चीजें खरीदें।
0: बिल्कुल,
1: ये वैसे तो स्वाभाविक बात है जागृति जी, लेकिन कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना भी जरूरी होता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, चाहे आमदनी कम हो फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार नियमित बचत की आदत भविष्य में आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि कमाई जरूरी है लेकिन कमाई को संभालना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: बिना समझे कर्ज लेना, दिखावे के लिए खर्च करना या अपनी क्षमता से ज्यादा आर्थिक बोझ लेना भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए युवाओं को बुनियादी वित्तीय समझ विकसित करनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि कमाई की खुशी आज है, बचत का सहारा कल भी है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जब हम सुरक्षित घर की बात करते हैं तो हमें कई तरह की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। शारीरिक सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, भावनात्मक सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, डिजिटल सुरक्षा के बारे में सोचना होगा और साथ ही सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, इस तरह सुरक्षित घर केवल एक मकान नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और विश्वास का वातावरण है।
1: जी हाँ,
0: बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी केवल युवाओं की नहीं है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि परिवार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार कशिश, परिवार युवाओं से केवल ये उम्मीद करता है कि वे पढ़े, नौकरी करें और कमाएं।
1: जी जी,
0: लेकिन युवाओं को केवल जिम्मेदारियां नहीं समझ और समर्थन भी चाहिए। अगर कोई युवा अपने करियर को लेकर परेशान है तो परिवार को उसकी बातें सुननी होगी।
1: जी जी,
0: अगर वो किसी नए क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके साथ बातचीत करनी होगी। हर युवा की यात्रा अलग होती है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है कशिश और कभी किसी को थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए श्रोताओं, परिवार में तुलना के बजाय संवाद होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी,
0: क्योंकि कहा गया है कि जहां परिवार साथ खड़ा हो वहां मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, इसी के साथ

0: शामिल है। एक सुरक्षित घर ऐसा होना चाहिए जहां बेटियों को भी अपने सपने देखने और पूरा करने का अवसर मिले। बेटी की शिक्षा, कौशल, आर्थिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता को महत्व देना पूरे परिवार को मजबूत बनाना है।
1: बिल्कुल,
0: हमें सोच बदलनी होगी श्रोताओं कि बेटियों का भविष्य केवल विवाह तक सीमित है। उनका भविष्य उनकी शिक्षा, उनकी प्रतिभा, उनके करियर और उनके अपने सपनों से भी जुड़ा है। कहा गया है कि बेटी का सुरक्षित आज समाज को मजबूत कर देता है।
1: बिल्कुल, ऐसे में हमारे युवा साथी बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो ये श्रोता साथियों कि आपको अपने शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता देनी होगी। अपने करियर की दिशा को लेकर जानकारी आप जुटाएं, कमाई के साथ साथ बचत की आदत को विकसित करें और बिना समझे आर्थिक फैसले कभी न लें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतनी होगी, असफलता से डरकर प्रयास करना बंद नहीं करना है। परिवार के साथ खुलकर बातचीत करनी है, अपने स्थानीय संसाधनों और अवसरों को पहचानना है और सबसे महत्वपूर्ण अपने सपने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि जागृति जी, अगर हमारे युवा साथी ये सभी चीजों या इन सभी महत्वपूर्ण कदमों को उठाएंगे तो हो सकता है कि वे जो सपना देख रहे हैं वो उनको पूरा कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में हर युवा की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: किसी के पास सुविधाएं ज्यादा है तो किसी के पास कम है। किसी को परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है तो किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। लेकिन एक बात हर युवा के लिए समान हो सकती है, वो है आगे बढ़ने की कोशिश।
0: जी हाँ,
1: सुरक्षित घर का सपना केवल ईंट और सीमेंट से पूरा नहीं होता युवाओं, वह आपकी मेहनत, समझदारी, प्यार, जिम्मेदारी और विश्वास से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: और बेहतर भविष्य केवल आने वाले कल का इंतजार करने से नहीं आएगा, उसे आज की मेहनत से बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, याद रखिए, सपना अपना घर बनाने का हो या बेहतर भविष्य बनाने का, शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी, क्योंकि सुरक्षित घर मजबूत परिवार, और अगर मजबूत परिवार है तो हमारा युवा भी सशक्त है, और अगर युवा सशक्त है तो हम एक बेहतर समाज को बना सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कशिश, और समय का मान रखते हुए अब हमें इस कार्यक्रम से विदा लेना होगा, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारतीय नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। बागल रेडियो एवं बागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो चुके हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, बचपन केवल किताबों, स्कूल और परीक्षाओं का नाम नहीं है। यही वह समय है कशिश, जब बच्चा सीखता है कि दुनिया को कैसे समझना है,
1: बिल्कुल,
0: दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने सपनों की ओर कैसे बढ़ना है। इस सीखने की यात्रा में परिवार के साथ एक और व्यक्ति की भूमिका बहुत खास होती है और वो है शिक्षक की। शिक्षक बच्चे को केवल पाठ नहीं पढ़ाते बल्कि कई बार उसकी छोटी सी जिज्ञासा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों के जीवन में शिक्षक की भूमिका क्या है और एक अच्छा शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व को किस तरह आकार देता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोताओं को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग्र रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि गीत से पहले हम आपको बता चुके हैं कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो बच्चे के जीवन में परिवार के बाद सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और वो है शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता। साथियों, कभी आपने सोचा है कि एक शिक्षक सिर्फ हमें किताबों का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों कोई शिक्षक हमें हमारी किसी छोटी सी प्रतिभा को पहचानने में मदद करते हैं? और क्यों किसी शिक्षक की कही गई कोई छोटी सी बात हमें वर्षों तक याद रहती है? क्योंकि अंजलि जी, शिक्षक केवल पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि बच्चे के सीखने, सोचने, समझने और आगे बढ़ने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय है, जहां बच्चा लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: वो अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, खुद अनुभव करके दुनिया को समझने की कोशिश करता है। और इसी उम्र में विद्यालय और शिक्षक उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, स्कूल में बच्चा अलग अलग विषय सीखता है, लेकिन शिक्षक उसे यह समझने में मदद करते हैं कि उस ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। बच्चे के सवालों को सुनना और उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: गलती होने पर केवल डांटने के बजाय गलती से सीखने का अवसर देना बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पढ़ाई को बच्चे के अनुभव और आसपास की दुनिया से जोड़ने से सीखना आसान और रुचिकर बनता है।
0: बिल्कुल।
1: हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, इसलिए उसकी गति और रुचि को समझना भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल।
1: कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो कई बच्चे खेल, कला, बोलने, कहानी सुनने या किसी दूसरे काम में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। शिक्षक अगर इन खूबियों को पहचाने तो बच्चे को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। कभी शिक्षक का एक छोटा सा वाक्य, तुम यह कर सकते हो, बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उनकी अपनी प्रगति पर ध्यान देना जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें तो बच्चों के जीवन में शिक्षक की पहली बड़ी भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। किसी को गणित पसंद होती है तो किसी को कहानी सुनाना, किसी को चित्र बनाना तो किसी को खेलना, तो किसी को विज्ञान से जुड़े प्रयोग करना।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, कभी कभी बच्चा खुद भी नहीं जानता कि उसकी खासियत क्या है। ऐसे समय में शिक्षक उसकी रुचि और क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे कि शिक्षक बच्चे से कह सकते हैं कि तुम यह बहुत अच्छे से करते हो, इसे और आगे बढ़ाओ। श्रोता साथियों, ऐसी एक छोटी सी बात बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत तो होती ही है, जरूरत होती है बस उसे पहचानने की और निखारने की।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात करें तो बच्चों को समय पर स्कूल आना, अपना काम पूरा करना, दूसरों का सम्मान करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना सिखाना भी जरूरी है। लेकिन अनुशासन का मतलब डर पैदा करना नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे को नियम का कारण समझाया जाए, गलती पर अपमान करने के बजाय समझने का प्रयास किया जाए, बच्चे की बात भी सुनी जाए, डर के बजाय भरोसे का वातावरण बनाया जाए। ऐसे माहौल में बच्चा अपनी परेशानी शिक्षक से खुलकर साझा भी कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, एस्केप के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि शिक्षक बच्चों को अच्छे व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी कैसे सिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे कि स्कूल बच्चों के लिए समाज को समझने की पहली जगहों में से एक है।

0: जहाँ बच्चा अलग अलग परिवारों और परिस्थितियों से आए बच्चों के साथ रहता है।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षक बच्चों को सिखा सकते हैं कि सभी बच्चों के साथ सम्मान से व्यवहार करें, किसी बच्चे को उसकी भाषा, कपड़े, परिवार या आर्थिक स्थिति के कारण अलग नहीं समझे, मिलजुल कर काम करें, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें, स्कूल और आसपास के वातावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी समझें। ये बातें किताबों से बाहर की ऐसी सीख है कशिश, जो बच्चे के व्यवहार में लंबे समय तक रहती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बच्चे के विकास की जिम्मेदारी केवल स्कूल या केवल परिवार की नहीं, दोनों के बीच संवाद होना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: माता पिता बच्चे की घर की आदतों और व्यवहार को बेहतर जानते हैं, जबकि शिक्षक जो है कशिश स्कूल में उनके सीखने और साथियों के साथ व्यवहार करने को देखते हैं। इसलिए समय समय पर दोनों के बीच बातचीत हो तो बच्चों की कठिनाइयों को समय रहते समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, स्कूल जाने में रुचि नहीं ले रहा या अचानक उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो शिक्षक और परिवार मिलकर कारण समझने का प्रयास भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो बच्चे के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो अपने शिक्षक के सामने अपनी बात कह सके। अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे रहा है या किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है या किसी गतिविधि में भाग लेने से डर रहा है, तो ऐसे में किसी भरोसेमंद बड़े से बात करने का अवसर उसे मिलना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा ये महसूस करे कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। श्रोता साथियों, बच्चे को सुनना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को समाधान से पहले सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात को ध्यान से सुन सके और समझ सके।
0: बिल्कुल कशिश, हर बच्चा अपने आप में अलग है। किसी को गणित जल्दी समझ आती है, किसी को कहानी लिखना पसंद है तो कोई खेल में अच्छा है, तो कोई चित्र बनाने में। एक शिक्षक की खूबसूरती यही है कि वह बच्चे को केवल उसके अंकों से नहीं बल्कि उसकी पूरी क्षमता से देखने की कोशिश करे। और बच्चे के लिए भी शिक्षक से डरने के बजाय उनसे सवाल पूछना, अपनी परेशानी बताना और सीखने की कोशिश करना उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बचपन में मिली सीख बच्चे के साथ लंबे समय तक चलती है। शिक्षक इस सीख के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं। वे बच्चे को किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ सवाल पूछना, अपनी बात रखना, दूसरों का सम्मान करना, जिम्मेदारी निभाना और कठिन परिस्थिति में प्रयास करते रहना सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शिक्षक भी तभी बच्चे को बेहतर समझ पाएंगे जब परिवार और स्कूल के बीच संवाद बना रहे। इसलिए हमें बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां डर से ज्यादा भरोसा हो, तुलना से ज्यादा प्रोत्साहन हो और केवल अंकों से ज्यादा बच्चों के सीखने और व्यक्तित्व को महत्व मिले।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती है कशिश। कभी कभी एक शिक्षक का विश्वास, एक परिवार का साथ और बच्चे की छोटी सी कोशिश ही उसके लिए नई राह खोल देती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझे तो श्रोता साथियों, एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते थे, आरव और मोहन। आरव अंजलि जी पढ़ाई में अच्छा था लेकिन मंच पर बोलने से बहुत डरता था। जब भी स्कूल में भाषण या कविता प्रतियोगिता होती, आरव सबसे पहले पीछे हट जाता।
0: बिल्कुल
1: साथियों, एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा कि बेटा आरव, तुम मंच पर क्यों नहीं जाते? आरव कहता है, सर मुझे डर लगता है, अगर मैं भूल गया तो। शिक्षक कहते हैं, अगर भूल भी गए तो क्या हो जाएगा? साथियों, आरव इस बात पर चुप हो गया। शिक्षक ने आरव से मुस्कुराकर कहा, पहली बार मंच पर जाना जीतने के लिए जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: पहली बार मंच पर जाना खुद पर भरोसा करना सीखने के लिए जरूरी है। अगले दिन शिक्षक ने आरव को पूरी कक्षा के सामने सिर्फ 2 मिनट वाक्य बोलने को कहा। अंजलि जी, आरव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, वह थोड़ा घबराया लेकिन उसने अपनी बात पूरी की, पूरी कक्षा ने तालियां बजाई। उस दिन आरव को कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला लेकिन उसे उससे भी बड़ी चीज मिली और वो थी अपने ऊपर उसका विश्वास। कुछ महीनों बाद वही आरव स्कूल के कार्यक्रम में मंच से भाषण दे रहा था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम यही समझ पाए हैं कि कभी कभी शिक्षक बच्चे को सफलता तक पहुंचने से पहले उसे खुद पर विश्वास करना भी सिखा देते हैं।
0: जी हाँ,
1: हर बच्चा अलग होता है। किसी में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, तो कुछ बच्चे कुछ नई चीजों को करने से डरते हैं। अंजलि जी,
0: जी
1: तो
0: हाँ।
1: ऐसे में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: बिल्कुल कशिश, बचपन को मजबूत बनाने के लिए हमें ऐसे स्कूल और कक्षाएं चाहिए जहां बच्चा केवल पढ़े नहीं बल्कि सोचे, पूछे, समझे, अपनी प्रतिभा पहचाने और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखें।
1: बिल्कुल,
0: जब शिक्षक परिवार और समुदाय मिलकर बच्चे के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं तब शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं रहती बल्कि जीवन को समझने की तैयारी बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि शिक्षक बच्चे के भविष्य को सीधे तय नहीं करते लेकिन वे उस बच्चे को अपनी राह पहचानने के लिए जरूर ज्ञान, अवसर और हौसला दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जब बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता, सही मार्गदर्शन और विश्वास तीनों मिलते हैं तो उसके भीतर अपनी क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने की मजबूत नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी जरूरी बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपरा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
2: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
2: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

रे भाई अपड़ू नुकसान था हेरे निंदरा मान की रे जू भाई बिन अपड़ू नुकसान था हेरे हिरमी खेती कर जोरे भाई बुन जीवन अपड़ो सुखी रे हिरमी खेती कर जोरे भाई बिन जीवन अपड़ो सुखी।

0: अंजलि बोन गीता ईशुपुरन अनंत गीता ते पड़ा सूटा आशा करा कि जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ई आपने किसान भाई बोन ने गमी होगा किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली शको आपने अना पता माते
1: होवे भाई बोनू लकी लो मारू पतु अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान हमारो पिन कोड नंबर है 3200001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अना फोन नंबर माते हमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तो किसान भाई बन फेरी मलंगा अनास कार्यक्रम में एक नाम विषय ने हाथे तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: थारी में पासो लावो जुनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। बागड़ रेडियो एवं बागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप क्यारे विचार कर्यो है कि ज़ेरिया पेड़ की छाँ में आपणे रहो या आपणे में कितनी शांति मिले है, ज़ेरी हवा में आपणे हाल रहो, ये भी आपणा थकी कई आश राखे है। हवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपणे हरते जीवंगा। प्रकृति आपणी जरूरत नहीं बल्कि आपणी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा लूंगा, पानी ने बचा लूंगा, मैं आपणी धरती ने जीवन दान आलूंगा।
0: हवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: हवे आज नया कदम है, ये आबावारा काल में बदलाव की शुरुआत है।
0: वागुड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कार्य सोचो है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
2: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपरो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपरो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपरे भाई बोन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थई जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है गांव के विकास में शिक्षक की भूमिका को लेकर। अंजलि, एक शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाता नहीं बल्कि वो पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे गांव के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, गांव के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो कहना चाहेंगे, गांव किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। गांव का विकास अंजलि केवल सड़क, बिजली, पानी और भवनों के निर्माण से पूरा नहीं होता। वास्तविक विकास तो तब होता है जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित, जागरूक, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो। इस परिवर्तन की नींव रखने में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहते। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और समुदाय को भी जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षकों को बच्चों और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ती है और स्थानीय भाषा, स्थानीय ज्ञान और समुदाय से जुड़ाव पर जोर देती है। यही बात करें शिक्षा के माध्यम से गांव को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, तो कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव के विकास की पहली सीढ़ी जो है वो शिक्षा है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षक बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, गणित और विज्ञान सीखने के साथ साथ उन्हें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी देते हैं। जब गांव का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके सामने रोजगार, उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। शिक्षित बच्चे आगे चलकर अपने परिवार और गांव के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ बच्चों में जागरूकता पैदा करना क्या होता है इसको लेकर हम बात बताएं हमारे श्रोता साथियों को। तो साथियों, शिक्षक बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि उन्हें समाज से जुड़ी समस्याओं को समझना भी सिखाता है। स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, बाल अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता, ये सारे विषयों पर विद्यालय के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। बच्चे जब ये जानकारी अपने घर तक ले जाते हैं तो जागरूकता पूरे परिवार और समुदाय तक पहुंचती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही हर गांव की अपनी भाषा होती है, बोली होती है, लोकगीत होते हैं और लोक कला होती है, पारंपरिक ज्ञान भी होते हैं। लेकिन अंजलि, शिक्षक बच्चों को अपनी स्थानीय संस्कृति से जोड़कर इस विरासत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, लोक कला और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े ज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ना, बच्चों को अपने क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में मदद करना, एनईपी 2020 में भी स्थानीय कला, कृषि, व्यवसाय और अन्य स्थानीय कौशलों को सीखने सिखाने से जोड़ने की बात कही गई है।
1: जी हाँ जागृति जी, गांव के विकास में विद्यालय और परिवार का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक अभिभावकों से नियमित संवाद करते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अभिभावकों को यह समझना भी जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बहुत से शिक्षकों से जब हमारी बातचीत होती है तो हम सुनते हैं उनके माध्यम से कि वो किस तरीके से अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक स्कूल नहीं जाता है तो किस तरीके से वो घर पर जाकर देखते हैं कि स्थिति क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अभिभावकों और शिक्षकों का जो जुड़ाव है वो बहुत ही मजबूत होता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है।
0: जी हाँ अंजलि, और हम बताना चाहेंगे कि गांव के विकास में बेटियों की शिक्षा का भी विशेष महत्व है। शिक्षित लड़की आगे चलकर अपने परिवार और समाज में जागरूकता का माध्यम बन सकती है। शिक्षक अभिभावकों को बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने के लिए महत्व के बारे में समझाते हैं और विद्यालय में ऐसा वातावरण भी बनाते हैं जहाँ बेटियाँ सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास से सीख पाए।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही विद्यालय गांव के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनता है अंजलि। शिक्षक समुदाय के साथ मिलकर विद्यालय में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जागरूकता, पुस्तक पठन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षक पुरस्कारों के मानदंडों में भी समुदाय को विद्यालय के विकास से जोड़ना, अभिभावकों और अन्य हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी, ये सारे कार्य जो है वो महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं कि गांव के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है और क्या महत्व है, ये बातें निरंतर आगे यूं ही ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें स्वच्छ और स्वस्थ गांव के लिए शिक्षक की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, स्वस्थ गांव के लिए जागरूकता जरूरी है। शिक्षक बच्चों को हाथ की स्वच्छता, साफ पानी, पौष्टिक भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास सफाई रखने का महत्व समझा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: विद्यालय में भी जागृति जी स्वच्छता अभियान चलाकर बच्चों को केवल सफाई करवाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि स्वच्छता हमारी रोजमर्रा की आदत बने। जब बच्चा अपने घर में स्वच्छता की बात करता है तो परिवार भी प्रभावित होता है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समुदाय को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में योगदान देते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बच्चे की शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार और विद्यालय जब साथ मिलकर काम करते हैं श्रोताओं, तभी बच्चे के विकास को मजबूत आधार मिलता है। शिक्षक अभिभावकों से संवाद कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी साझा भी कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि ये चीजें होती भी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों की क्षमता को समझ नहीं पाते, शिक्षक उनके साथ बातचीत करके ये बता सकते हैं कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है और उसे आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार का सहयोग चाहिए। इसलिए शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद गांव की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाता है। गांव के विकास की बात हो और बेटियों की शिक्षा की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है। जब बेटियां शिक्षित होती है तो उनके ज्ञान और जागरूकता का पूरा लाभ पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए कहना चाहेंगे कि बेटी पढ़ेगी तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत होगी।
0: जी हाँ जागृति जी, आज का समय तकनीक का समय है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल साधनों ने जानकारी को हमारे बहुत करीब ला दिया है, लेकिन जानकारी का सही उपयोग करना भी सीखना जरूरी है। शिक्षक बच्चों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित और सकारात्मक प्रयोग करना सिखा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करके ग्रामीण बच्चों को सीखने के नए अवसर मिल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही बच्चों को यह भी समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती, इसलिए सही जानकारी पहचानने की क्षमता भी शिक्षा का ही हिस्सा है।
1: जी हाँ,
0: यही बात करें गाँव के स्थानीय ज्ञान से बच्चों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो गांव के पास अपना बहुत बड़ा ज्ञान भंडार होता है। किसान को मौसम की समझ होती है, बुजुर्गों के पास लोक परंपराओं का ज्ञान होता है, कारीगरों के पास जागृति जी पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर होता है, महिलाओं के पास भोजन, बीज संरक्षण और घरेलू ज्ञान की अनेक परंपराएं होती है। शिक्षक बच्चों को इस स्थानीय ज्ञान से जोड़ सकता है। बच्चों को अपने गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने, स्थानीय इतिहास जानने और पारंपरिक ज्ञान को समझने के अवसर दिए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे बच्चों में अपने गांव और अपनी विरासत के प्रति सम्मान पैदा होता है।
1: जी अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन की व्यवस्था का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तो तब मजबूत होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। शिक्षक बच्चों को संविधान, समानता, सहयोग, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। ये उन्हें समझाया जा सकता है कि गांव की समस्याओं का समाधान केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। गांव की समस्या, गांव की चर्चा और समाधान में गांव की भागीदारी, यही स्वराज की भावना को मजबूत करता है। तो साथियों, कहना चाहेंगे आपसे कि अकेला शिक्षक नहीं, लेकिन शिक्षक जागरूकता की वो लो जला सकता है जिससे कई लोग अपने गांव के लिए आगे आने को प्रेरित हो, और यही तो सच्चे स्वराज की खूबसूरती है। बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबकी भागीदारी से आता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया अंजलि कि विद्यालय से निकले ज्ञान की रोशनी, घर घर पहुंचे जागरूकता की रोशनी, शिक्षक बने बदलाव की पहचान, तभी मजबूत बने अपना गाँव।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, शिक्षक केवल वर्तमान की कक्षा नहीं पढ़ाता, वह भविष्य की नींव भी तैयार करता है।
1: जी हाँ,
0: आज जिस बच्चे को शिक्षक ईमानदारी सिखा रहा है, वही बच्चा जागृति जी कल समाज में ईमानदारी को मजबूत करेगा। आज जिस बच्चे को पानी बचाने की सीख मिल रही है, वही कल गांव के जल स्रोतों की रक्षा करेगा। आज जिस बच्चे को पेड़ लगाने का महत्व समझाया जा रहा है, वही कल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनेगा। और आज जिस बच्चे को अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियां समझाई जा रही है, वही कल जागरूक नागरिक बनेगा।
1: जी हाँ,
0: इसलिए शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने वाले की नहीं बल्कि भविष्य बनाने वाले की भी है।
1: हम देखते हैं अंजलि कि गांव का विकास तब पूरा होगा जब विकास की यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ेगा, और इस यात्रा में शिक्षक एक ऐसा मार्गदर्शक है जो बच्चों को ज्ञान देता है, परिवारों को जोड़ता है, समाज में जागरूकता फैलाते हैं और आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मजबूत गाँव की शुरुआत मजबूत शिक्षा से होती है, मजबूत शिक्षा की शुरुआत अच्छे शिक्षक से होती है, और अच्छे शिक्षक की सीख से जागता है पूरा समाज। हम अपने गाँव के शिक्षकों के योगदान को सम्मान दें और शिक्षा को गांव के विकास का सबसे मजबूत आधार बनाए। इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले क्यों न जागृति जी हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहें क्या सही जानकारी, सुनी सुनाई बातों से कैसे बचें। तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम अक्सर उसे बिना सोचे दूसरे तक भी पहुंचा देते हैं।
0: जी
1: कभी
0: हाँ।
1: कोई कहता है कि फला चीज खाने से बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, तो कभी कोई कहता है कि ये दवाई या ये घरेलू नुस्खा हर बीमारी का इलाज बता देता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन मनीषा, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हर सुनी सुनाई बात सही होती है? क्योंकि श्रोता साथियों, स्वास्थ्य के मामले में छोटी सी गलत जानकारी भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों और सही जानकारी में फर्क कैसे करें और किस बात पर भरोसा करने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी सुनी सुनाई बातों से कैसे बचें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के समय में हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना चाहते हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है, शरीर में कोई परेशानी महसूस होती है या श्रोता साथियों किसी दवा के बारे में जानना होता है तो हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें सही जानकारी के साथ साथ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं साथियों जिसका कोई पक्का आधार नहीं होता है। कोई कहता है कि यह चीज खाने से हर बीमारी ठीक हो सकती है, कोई कहता है कि इस दवा को लेने से तुरंत आराम मिलेगा, कोई व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर पूरी बीमारी के बारे में सलाह देने लगता है। हम इन बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं अंजलि जी, यही गलती श्रोता साथियों कई बार हमारे स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।
1: जी हाँ मनीषा, किसी बात को सुनना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही मानने से पहले उसकी जांच करना भी जरूरी है। आज हम देखते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइटों पर स्वास्थ्य से जुड़ी कई पोस्ट और वीडियो तेजी से फैलते हैं। कई बार उनमें आधी अधूरी जानकारी होती है। किसी वीडियो में कही गई बात को डॉक्टर की सलाह न समझें, बिना जांचे स्वास्थ्य संबंधित मैसेज को आगे न भेजें। जानकारी किस संस्था, डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने दी है ये भी हमें देखना है।
0: जी हाँ,
1: बहुत ज्यादा चौंकने वाले या तुरंत इलाज का दावा करने वाले संदेशों से हमें विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देखकर वही दवा खुद लेना शुरू कर देते हैं। यह तरीका भी सही नहीं है। हर बीमारी के लक्षण एक जैसे दिखाई दें, जरूरी ये नहीं है कि कारण भी उसका एक ही हो। दवा की मात्रा और अवधि व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा को अपनी मर्जी से बंद या बदलना उचित नहीं है।
0: जी
1: खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के मामले में बिना चिकित्सीय सलाह के दवा या उपचार न करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि दवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दवा का इस्तेमाल सही तरीके से करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देखकर अपने लिए वही दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को किसी दवा से आराम मिला, इसका मतलब श्रोता साथियों यह बिल्कुल नहीं है कि वह दवा हमारे लिए सही होगी।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर ने जितनी मात्रा में और जितने समय के लिए दवा बताई है उसी तरह से हमें लेनी चाहिए। साथ ही साथियों आपको कहना चाहेंगे कि दवा से जुड़ी कोई भी परेशानी या सवाल हो तो हमें डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से पूछना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि घरेलू अनुभवों का अपना स्थान हो सकता है, लेकिन हर घरेलू नुस्खा बीमारी का इलाज नहीं होता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी घरेलू उपाय से आराम मिला, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपाय बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए यह समझना जरूरी है कि आराम मिलना और बीमारी का इलाज होना हमेशा एक ही बात नहीं होती है। अगर लक्षण लगातार बने रहें, बढ़ते जाएं या गंभीर दिखाई दे तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: जन्म। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यही बात करें तो श्रोता साथियों, जब भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई नई बात सुने तो खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि ये जानकारी मुझे किसने दी है, क्या इसका कोई विश्वसनीय स्रोत है, क्या ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सक या किसी मान्य स्वास्थ्य संस्था से मिली है, क्या इसमें किसी बीमारी को तुरंत ठीक करने का दावा किया जा रहा है, क्या इसे बिना जांचे आगे भेजना ठीक होगा। अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है तो इस जानकारी को आगे फैलाने से हमें बचना होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, स्वास्थ्य के मामले में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी होती है सावधानी। हमें यह आदत बनानी चाहिए कि पहले जानकारी की जांच करें, फिर उसे अपनाएं और उसके बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं।
1: जी हाँ,
0: ये गलत स्वास्थ्य सलाह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह परिवार और समुदाय में भी फैल सकती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि घर में अगर किसी एक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित अंजलि जी गलत जानकारी मिलती है तो हम देखते हैं कि वो बात ही वो पूरे परिवार में फैला देते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार के सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हमें पहले जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें माननी है। लोगों की बातों में आकर हर किसी की बात हमें नहीं मान लेनी है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के मामले में श्रोता साथियों, हमें विशेष सावधानी बरतनी है। किसी की बीमारी देखकर खुद से इलाज शुरू करने के बजाय हमें डॉक्टर की सलाह लेना हमारे लिए जरूरी हो सकता है।
0: जी हाँ मनीषा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत का इस्तेमाल हमें करना जरूरी है। अपने डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से हम सलाह लें, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से जानकारी प्राप्त करें, सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जानकारी पर ध्यान दें, किसी स्वास्थ्य संबंधित वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट को मानने से पहले उसके स्रोत और तारीख की जांच करें, और सबसे जरूरी, अगर किसी बीमारी के लक्षण गंभीर हैं या लगातार बने हुए हैं तो केवल इंटरनेट या घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
1: जी हाँ,
0: आज की बातचीत से एक बात साफ होती है श्रोता साथियों, कि स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुनी सुनाई बात सही नहीं होती। किसी ने कहा इसलिए मान लेना, किसी वीडियो में दिखा इसलिए अपना लेना, या किसी रिश्तेदार को फायदा हुआ इसलिए वही तरीका खुद आजमा लेना, यह तरीका हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सही जानकारी पाने के लिए सवाल पूछिए, स्रोत जांचिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। साथ ही कोई ऐसी जानकारी जो आपको खुद उस पर संदेह हो तो उसे बिना जांचे आगे भेजने से बचिए, क्योंकि याद रखिए कि स्वास्थ्य की जानकारी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सही होना।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हमारा स्वास्थ्य हमें फिर नहीं मिलेगा। एक बार इस विषय पर हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल बीमार होने के बाद जानकारी लेना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें पहले से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साफ पानी पीना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए और अपने सेहत में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना भी जरूरी है साथियों।
0: जी जी,
1: साथ ही यह भी जरूरी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी बात सुनते ही उस पर विश्वास हमें नहीं करना है। पहले जानकारी की जांच करें, फिर उसे अपनाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जो है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जानकारी हमारे आसपास हर जगह उपलब्ध है, परिवार में होने वाली बातचीत से लेकर मोबाइल पर आने वाले संदेशों और सोशल मीडिया पर दिखने वाले वीडियो तक। लेकिन जानकारी की अधिकता का मतलब यह नहीं है कि हर जानकारी सही भी हो। कई बार एक सामान्य से लगने वाली बात धीरे धीरे अफवाह का रूप ले लेती है और लोग बिना उसकी सच्चाई जाने उसे दूसरों तक पहुँचाने लगते हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार में एक छोटी लेकिन जरूरी आदत शामिल करनी चाहिए कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधित बात को सुनकर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसकी जांच करें। यह सोच हमें गलत सलाह, अनावश्यक डर और गलत उपचार से बचने में मदद कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें यह भी समझना होगा कि अफवाहों को रोकने की जिम्मेदारी केवल डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, हम सभी इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। अगर कोई अपुष्ट स्वास्थ्य संदेश हमारे पास आता है तो उसे आगे भेजने के बजाय वही रोक देना भी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक कदम है। एक जागरूक परिवार वही है जहां स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछने में संकोच न हो, गलत जानकारी को चुनौती दी जाए और सही सलाह लेने को प्राथमिकता दी जाए। जब हम खुद जानकारी की पुष्टि करने लगेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, तब हमारे गाँव और समुदाय में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और समझ दोनों मजबूत होंगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: પપ્પા પપ્પા મારે ભી ભણવા જવું હે, સોપડા થકી દોસ્તી કરવી હે.
1: બસ યહી તો શરૂઆત હે બદલાવ કી. જબ હર બેટી બેટા પઢેગા તભી તો ગાંવ ગાંવ આગે બઢેગા. હોવે ન કોઈ ગરીબી રોકે ન કોઈ હાલાત રોકે, શિક્ષા તકીસ બદલેગા હર એક દાડો નિરાતર.
0: હિંડો સ્કૂલ જા, આપણે આપણા ભી હપના પૂરા કરો.
1: યાદ રખી કલમ કી તાકત હર મુશ્કિલ પર ભારી હૈ, હર બચ્ચે કી પઢાઈ હમ સબ કી જિમ્મેદારી હૈ.
2: હોવે જઈ વરે સબ સોરા ભણેગા તારે તો દેશ અગાડી વધેગા.
1: શિક્ષા નહીં તો સપના અધૂરા, શિક્ષા હૈ હર બચ્ચે કા પૂરા હક.
2: વાગ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
3: दोस्तों तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान. जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे. यह बात आज ही तुम जान लो.
4: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी.
3: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान.
4: वाग्धारा संस्थान और वागा रेडियो द्वारा जनहित में जारी.
5: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन. जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ी सी व्यायाम ने तात्कालिक में जीवन जीवो, फल सब्जी रोजे खाओ बीमारी ने दूर भगावो, जंक फूड तक ही दूर रहो, नींद पूरी लो ने खुश रहो. ओवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है. आज थकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा. होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत में असली राज. वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
7: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.

छोकरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसूर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है दूसरों की मदद करने का महत्व। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले कभी जीवन नहीं जी सकता। उसे जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कभी परिवार हमारा सहारा बनता है दोस्तों, तो कभी हमारे मित्र, कभी हमारे शिक्षक, तो कोई अनजान व्यक्ति जो मुश्किल समय में हमारा मददगार बन जाता है। इसी कारण से दोस्तों सहायता और सहयोग मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और सहयोग की भावनाएं होती है ना, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि मदद केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों, सही मार्गदर्शन, समय देने और भावनात्मक सहारे से भी होती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करें। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या महत्व है। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो दूसरों की मदद करना यानी कि सहायता करने की भावना है वो आखिर है क्या। दोस्तों, सहायता का मतलब होता है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कठिन समय में मदद करना। जब हम दोस्तों बिना स्वार्थ के किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, किसी के कठिन समय में उसे संभालते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वही सच्ची मदद कहलाती है। साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार उन्हें दूसरों के दुख और संघर्ष के बारे में तो पता ही नहीं चलता, और हम देखते हैं कि उनका दुख उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। साथियों, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उसके दर्द को समझता है, वही श्रोता साथियों असल में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हम देखते हैं कि सहायता की भावना यानी कि मदद करने की भावना हमें ये सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्तमान में हम इतने कठोर हो चुके हैं कि हम दूसरों की भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम बस स्वार्थ में अपना ही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से मेरा भला हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक वास्तविक सत्य ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे संसार में भला उसी का हुआ है जिसने किसी और का भला किया हो। अगर आपके कार्यों से दोस्तों किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी और के घर में दिया जलता है, या फिर कहूँ तो किसी और के घर में खुशियाँ आती है, तो उससे अच्छा काम या उससे पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वही व्यक्ति असल में ईमानदार कहलाता है और समाज में बदलाव ला सकता है जिसने अपने कार्यों से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो। हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से खुशी मिलती है। साथियों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाले को ही राहत नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, या फिर श्रोता साथियों किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना। हम देखते हैं कि ये जो सभी कार्य हैं, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी की मदद करके हमें मिलती है। मदद करने से दोस्तों हमारा मन हल्का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का उद्देश्य भी हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सहायता के लिए धन से अधिक जरूरी है अच्छा दिल और सच्ची भावना। एक मीठा शब्द भी श्रोता साथियों किसी टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें एक आत्मिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चल ही रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा विषय हमारा बातचीत का चल रहा है, हम जान रहे हैं कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और इस मदद से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है। अब यहीं अगर बात करूं श्रोता साथियों, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे समाज में भी मजबूती आती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे मदद करने से समाज में मजबूती कैसे आएगी, तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वह समाज हमेशा मजबूत और खुशहाल बनता है। अगर समाज में केवल स्वार्थ हो श्रोता साथियों, तो वहाँ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन वही जहाँ सहयोग और संवेदनशीलता होती है, वहाँ

प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या फिर कठिन परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब मानवता की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहायता का भाव समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों, सहायता करने से समाज भी मजबूत बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं। जैसे कि दुनिया में दोस्तों बहुत से लोग धनवान बने हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए। लेकिन जिन्होंने श्रोता साथियों मानवता की सेवा की है, दूसरों की हमेशा सहायता की है, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग दोस्तों समाज में प्रेरणा बन जाते हैं और उनका जीवन ये संदेश देता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भावना से की जाती है। हम देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करने वाला व्यक्ति, किसी बीमार की सेवा करने वाला व्यक्ति या फिर किसी दुखी इंसान को सहारा देने वाला व्यक्ति हो, ये सभी दोस्तों समाज के असली नायक माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा काम न कर ले तब तक सहायता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना या फिर किसी विद्यार्थी को सही सलाह या फिर मार्गदर्शन देना, किसी गरीब को भोजन देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं वो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी गहरा होता है। कई बार इंसान को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों अपनापन की और सहारे की। तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों आपसे कि दूसरों की मदद करना मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल समाज को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बना देता है। साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए आगे आए। और हम देखते हैं कि हमारे इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास साथियों किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को हमेशा अपनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जिएंगे। याद रखिए साथियों, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों एक प्यारे से गीत के साथ पहले हम मनोरंजन कर लें।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
2: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
3: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
2: वाग्धारा संस्था और वागा रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
3: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग में प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागर रेडियो एवं वांतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे नहीं, जमीन के नाम हिरते आवे, कागज केरे करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थी जाए,
3: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव में पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है, इतने से हमरो ने हाथों मिलने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन आते नाम लकड़ वो काटे नती, जय वरे अधिकार हमरो अपना भी जानकारी, सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपने नाम लकाड़ो।
3: वागर रेडियो एवं वांतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए।

0: लो ये कंबल, बहुत सर्दी है। अरे लो ना कंबल, से भी कोई जिद है।
1: और तुम?
0: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही। कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
1: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
0: कल तक कोई नहीं था, लेकिन अब है। कोई शक?

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, तुम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
3: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
2: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
4: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
3: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो, वागधारा संस्था, बांसवाड़ा, राजस्थान।

मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।